0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेडिकल बोर्ड में ओचितो तब्दीलीअ ते वापारी मीर रज़ा जे वारसन पुट जी क़बर कुशाई ऐं ॿीहर पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो। नौजवान मीर रज़ा जे वालिद मीर हुसैन चयो त हू क़बर कुशाई ते तयार थिया त राति जी उंदाई में मेडिकल बोर्ड तब्दील कयो वियो। हर मेडिकल बोर्ड खे इजाज़त न ॾींदा त क़बर कुशाई करे, असांजो ख़दशो सही साबित थियो। मीर रज़ा जे क़तल में ॿासर माण्हू मुलविस आहिनि। अठ रुकनी मेडिकल बोर्ड खे पंज रुकनी कयो वियो। डॉक्टर समिया सैद खां सवाइ समूरनि मेंबरनि खे तब्दील कयो वियो। डिप्लोमासी पोरेत कराचीअ में फुर मज़ाहमत क़तल क्लिफ्टन जे इलाइक़े बात आइलैंड में हथियारमंदनि फुर मज़ाहमत डिप्लो जे ॻोठ वेजली जे रहवासी मेवो मेंगवाड़ खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मेवो मेंगवाड़ कराची में सिक्योरिटी गार्ड जी ड्यूटी कंदो हो। मक़तूल जो लाश ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ डिप्लो नियो वियो। वारसन पारां मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम करण जी घुर।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी हाँ, समय वापसि अची कयूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में, ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, ऐं मां मुंहिंजो मेज़बान नेमत लाजूणे जो। साईं, मुंहिंजा इंसानी जिस्म में काफ़ी बीमारियूं थियनि थियूं, जंहिंमें डिप्रेशन बि हिकु बीमारी आहे। दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसाला थियनि था, उनखे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो। डिप्रेशन जा मुख़्तलिफ़ सबबु थियनि था, जिन में को घरू सदमो, ॾुख या माशी मसाला या बेरोज़गारी, उहे चंद सबबु आहिनि जंहिंजे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं उन्हनि मंझां को बि सबबु उन ते लागू नथो थिए, त पोइ उन जो असुलु सबबु ॻोल्हण लाइ ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकिड़ो वाज़ियो सबबु इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेकी शयूं लागू आहिनि, उन में काफ़ी दोस्त नशो वापराइनि था, ऐं उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मसलन घटि निंड करण वारी आदत बि हूंदी आहे, ऐं घटि निंड करण सां डिप्रेशन में वाधि जो ख़तरो थी सघे थो। त सोचण सां बि डिप्रेशन में हली वञे थो, माण्हू सोचे न। जेतिरो इंसान खे ॻणिती आहे, परेशानी आहे, कहिड़ो बि मसइलो आहे, त कोशिशि करे सोचींदो त उन डिप्रेशन जे मर्ज़ में हली वेंदो। पर साईं, असांखे इहो जुग आहे, असांजो इहो फर्ज़ु आहे त हर मरीज़ जी इहा आदत कयूं ऐं उन खां हाल वल वठूं, ऐं जेको मरीज़ खां पुछणु वञे थो, इहो बि बहितर अमल आहे। हुन जी अधु बीमारी ख़तमु थी वेंदी आहे। कोशिशि कयूं त जेके बीमार आहिनि, जेके बि परेशान हाल आहिनि, उन खां हाल वठणु हाल अहिवाल ज़रूरी आहे। ख़ासि करे उन मरीज़ खां जेको बीमार आहे, उन खां पुछण बि तमामु ज़रूरी आहे।

जी साईं जा जेके दोस्त असांजो ॿिनि कलाकनि जो साथ ॾियनि था ऐं अॼोके दौर में वक़्तु कढी कंहिंजो साथ ॾियणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं दोस्तनि जी महिरबानी आहे जेके असांजो ॿिनि कलाकनि ताईं प्रोग्राम ॿुधनि पिया, लख गुरबनि उन्हनि जा ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण लाइ पंहिंजा नाला लिखाइनि पिया, जंहिंमें यासमीन मलक आहे मीरपुर ख़ासि खां ऐं फ़क़ीर महरम जतोई आहे ॻोठ आगा ख़ान जतोई खां, आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, लुकमान मरी मोहम्मद अमीन मरी सतार मरी हालेपुटा स्टाफ खां ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां, ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, वक़ार अली जुणे जो इकरार अली जुणे जो अबरार अली जुणे जो ॻोठ ठुल जुणे जो खां ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि के लिए आहे झंडो मरी खां, सोराब मंगरियो फरहान मंगरियो नज़र मोहम्मद मंगरियो ॻोठ सचेरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, असदुल्ला जुणे जो तौक़ीर अहमद जुणे जो बेबी अबिया फातिमा ऐं अजवा फातिमा ॻोठ ठुल जुणे जे खां, सभिनी जी वॾी महिरबानी। नगमो कयूं पिया अव्हां जे नां ख़ूबसूरत गॾिजी ॿुधूं पिया।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाण पाण ई पाणी खणंदियूं, पाण ई पाणी चुसींदियूं, ऐं वण वधी पंहिंजी वाध बीज करे पाण ई वॾो थी वेंदो। इन में रब जी वॾी हिकमत आहे।

जिया समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह में मुस्तफ़ा आकाश की शायरी अवां तई पहुँचाइंदासीं। चंड उभरिया जडहिं खां भितिन में वरी, चंड उभरिया जडहिं खां भितिन में वरी, दीद अटकी असांजी दरिन में वरी। नेण जाॻिया त रोशन शहर थी पियो, ख़्याल फाटा वञी दिल लॻिन में वरी। ही रुखियूं रक़्स थी मौज में झूमंदियूं, आण मुंहिंजा तसवर अखियुनि में वरी। प्यार खे पाप सम्झी कुठाऊं हिते, लाश उछले विया खजन में वरी। आउं आकाश शायर न मरंदुसि कॾहिं, आउं उभरी पियो ईंदुसि कतिन में वरी। चंड उभरी पिया जॾहिं खां भितिन में वरी, दीद अटकी असांजी दरिन में वरी।

जी हा समय प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा या आखिरी लम्हनि में अव्हां दोस्तनि जा कुझु नाला वठंदासीं। कोरी ॻोठ खां रांझन कोरी ऐं सखर खां अली गुल मीराणी, सजाद पालारी थाणे भोला खान खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ास खां यादि कयो, ऐं हाफ़िज़ असद लाइ चांडियो, हाफ़िज़ नवीद चांडियो, ॻोठ मीराणी चंडन खां ऐं ॻोठ मीराणी चंडन खां ई मोहम्मद आलम चांडियो, इनायत ख़ासि केली झंडे मरी खां ऐं ग़ुलाम सरर बागाई मोरे खां, नूर सिंतुनियो बदीन खां, इक़बाल लाशारी ॻोठ सोनो खान लाशारी मीरपुर ख़ास खां, ख़लील अहमद बि फेसबुक ते मैसेज कयो, ख़बर नाहे त ज़ात ऐं उन्हनि ॻोठु कहिड़ो आहे, बरकत जमाली बलोच जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां यादि कयो, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, ख़ुशि नगमो अव्हां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

कोटड़ी में मला बिरादरी के डिंदुरन में थियल छेड़े जो जख्मी फोत फारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार या मला बिरादरी के बिन दुरिन में जेड़े दौरान जख्मी थियल इब्राहिम मला फोती वो फोती नौजवान के वारिस औरतन ए मर्दन कोटड़ी थाने आडो लाश रखी धरणो हो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो।

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: choose to.
1: सऊदी अरब पाकिस्तान ऐं तुर्की जो सरबराही इजलास अॼु थींदो। गॾियल दिफ़ाई मुआहदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। सऊदी विलह जे दावत ते शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जदा में मौजूदु तुर्की जो सदर रजब तैयब एर्दोगान बि अॼु सऊदी अरब पहुचंदो। त टिनी मुल्कनि सरबराही इजलास में ख़िते जी सूरतयाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। ख़िते में अमुन जे क़याम लाइ थींदड़ कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। सऊदी अरब जे दौरे ते मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि मके शरीफ में उमिरो अदा कयो। पाकिस्तानी वफ़द कतुला जी ज़ियारत बि कई। उमिरो अदा करण बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं ॿियनि मेंबर्स मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी ऐं मुस्लमाननि जी

0: सिक्योरिटी फोर्सेज जा के बी जे मुख्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन ॾह खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एस पी आर मौजूदु ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म बख़्श में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देर सां कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जनमु भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ़ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सेज खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ौम खे पाक फोर्स सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानियुनि ते फ़ख़ुरु आहे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बरकुशाई मुलतवी। वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिलि ते पथर रखी क़बरकुशाई जो फ़ैसिलो कयो हो। राति जी ऊंदाई में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो। आई जी ते भरोसो न आहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझु बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसइलो हो। ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिशि थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असां खे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मिया साहब वेझो हथियारबंदनि जो ॻोठ ते हमिलो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ रईस करम चांडियो ते हथियारबंदनि हमिलो कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ॾींहं मुल्कनि पारां गॾियल दफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। सऊदी वली अहद जी दावत ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जद्दा में मौजूदु। तुर्किया जो सदर रजब तैयब एर्दोगान बि अॼु सऊदी अरब पहुचंदो। टे मुल्की सरबराही इजलास में ख़िते जी सूरतहाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। ख़िते में अमुन जे क़याम लाइ थींदड़ कोशिशनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। सऊदी अरब के दौरे ते मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मार्शल ऐं ॿियनि मके शरीफ में उमरो अदा कयो। पाकिस्तानी वफ़द अब्दुल्ला जी ज़ियारत बि कई। उमरो अदा करण बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं ॿियनि मेंबर्स मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी ऐं मुसलमाननि जी सलामतीअ लाइ दुआ बि घुरी। अमेरिका हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती आहे? अमेरिकी सदर ट्रंप जहाज जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रंप परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कयल वाइदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। अमेरिका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करणु घुर्जनि जंग बंदी बाबति कयल वाइदा पाड़े। सिक्योरिटी फोर्सिस जा के पी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन। 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एस पी आर मूजिब ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़मबख़्श में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देरि में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जनम वेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। शहबाज शरीफ़ चयो त क़ौम खे पाक फोर्स हलायतनि ऐं क़ुर्बानीनि ते फ़ख़्रु आहे। मीडिया मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बरकुशाई मुल्तवी। वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिलि ते पथर रखी क़बरकुशाई जो फ़ैसिलो कयो हो। राति जी ऊंदाही में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो आहे। आई जी ते भरोसो न आहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझु बि थी वञे पोइ हिते न हटंदसि। चवनि था 10 करोड़नि जो मसइलो आहे। ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिशि थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मियां साहब वेझो हथियारबंदनि जो ॻोठ ते हमिलो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ रईस करम चांडियो ते हथियारबंदनि हमिलो कयो। फायरिंग जे नतीजे में फिदा हुसैन चांडियो मारिजी वियो। मारफाणी दौर जे हथियारबंदनि ॻोठ ते हमिलो करे नौजवान खे क़तल कयो आहे ऐं मेहू बि काए विया आहिनि। नोटिस वरितो वञे। पुलिस चयो आहे त वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो ॻोठ भरिसां कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फसूली भेर सां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद कानर क़तल थी वियो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में तकरार तेज़ थी वियो। मेड़ भरिसां 3 ॿार पाणीअ जी खॾ में ॿुॾी विया। ॿिनि खे बचायो वियो। हिकु ॿार ॿुॾी फोती वियो आहे। लाश हथ कयो वियो आहे। ॻोठ ज़ोरामाची में 3 ॿार ॿुॾी विया। 5 वरियनि जी सभा जो लाश हथ कयो वियो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में नौजवान खलील शर जी मुबैन अगवा ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। एस एस पी नौशेरो फ़िरोज़ रोहल खोसो अदालत में पेश। महीने जी मोहलत ॾियण जी इस्तदा। अदालत एस एस पी खैरपुर अमीर सऊद मंसीअ खे बि ईंदड़ ॿुधणीअ ते तरे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ार मौजूद खलील शहर खे मज़दूरी बहाने घुराए अगवा कयो वियो हो। कराची में गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज ऐं हवाला हली में मुलविस 3 जवाबदार गिरफ़्तार। गुलशन इक़बाल में फर्ज़ी करंसी जी ख़रीद ऐं विकिरे जे इल्ज़ाम हेठि सैद आतिफ़ अब्बास ज़ैदीअ खे गिरफ़्तार कयो वियो। एफ आई ए तर्जुमान मूजिबि जवाबदार वटां 23,000 डॉलर, 45,000 रियाल, 1.11 करोड़ ईरानी रियाल ऐं 33 लख रुपियनि समेत ॿियो सामान बेहद कयो वियो। बहादुराबाद में कार्रवाई दौरान इंसाफ़ थी वई ऐं संदसि साथी खे गिरफ़्तार करे कब्ज़े मां 1 करोड़ रुपया हथ कया विया। कोट
चिकड़ी में मला बरादरी के बिन धुरन में थियल छेड़े जो जख्मी फोत वारसन जो लाश रखी धरणो निवारण खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार ॾींहं अॻु मला बरादरी जे ॿिनि धुरनि में छेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल इब्राहिम मला फोतियो फोती नौजवान जे वारिस औरतनि ऐं मर्दनि कोठी थाणे आॾो लाश रखी धरणो कयो जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कनकोट में क़ौमी अवामी तहरीक जी रैली सिंध में सूबनि जे क़याम जे मुख़ालफ़त अॻवाननि चयो त सिंध में नवनि सूबनि वारा बयान मज़म्मत जोॻा आहिनि सिंध सदियुनि खां हिकु हुई ऐं हिकु ई रांदी कंहिंखे बि सिंध तोड़णु न ॾींदासीं नवनि सूबनि वारो फ़ैसिलो वापसि वठी नफ़रत पखेड़णु बंदि कई वञे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में महांगाई ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो एहतियाज फेज़गंज में जमायत इस्लामी रैली कढी धरणो हयो मिठीअ में बि जमायत इस्लामी जो एहतियाज चाचरो वेझो ॻोठ रतन जो तड़ में रहमा ऐं समेजा बरादरी में धुरियुनि में प्लाट जी मालिकीअ तां तकरार तेज़ रहमा बरादरी माण्हुनि जो उमरकोट चाचरो रोड ते धरणो इंतिज़ामिया खां नोटिस वठण जो मुतालबो मुज़ाहिरीन चयो त प्लाट बाबति अणधुरी जांच करे इंसाफ़ कयो वञे ॿी सूरत में एहतियात जारी रहंदो मीरपुर भठोरो जे बॉयज़ हाई स्कूल जी इमारत ज़बून हाल हुअण ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतियात उस्तादनि चयो त स्कूल जी इमारत ख़तरनाक आहे क्लास ऐं स्टाफ रूम जे चितिन जा चापड़ किरी रहिया आहिनि ज़िंदगियूं ख़तरे हेठि आहिनि मीरपुर गोड़ो में ॻोठ अली मुराद जे ॻोठाणनि जो स्कूल में उस्ताद न हुअण ऐं बुनियादी सहूलियतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतियात ॻोठाणनि चयो त स्कूल में उस्ताद हुअणु सुधो ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि स्कूल में उस्ताद मुक़ररु करे बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि थाईलैंड जे राजधानी बैबाक में शागिर्द जे स्कूल में फायरिंग ॿ उस्ताद पंज उस्ताद मारिजी विया पुलिस मूजिबि नाए क्लास जे शागिर्द ॾाॾी ऐं ॾाॾे खे क़तल करण बाद स्कूल में पंजनि उस्तादनि खे निशानो बणायो वाके बाद हमिलो कंदड़ शागिर्द पाण बि आपघात करे छॾियो वाके में मारिजी वियल माण्हुनि जो मजमूई अंगु अठ आहे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: போனகலந்து சாபுதை சோரா.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

सऊदी अरब पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो सरबराही इजलास कुझु में शुरू थियण वारो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ़द पहुची विया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म ऐं वफ़द जो आदर भाव कयो। इजलास में शिरकत लाइ तुर्क सदर रजब तैयबगान अर्दगान बे सऊदी पहुतल। मीडिया रिपोर्ट्स मूजिब पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया पारां गॾियल दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। सऊदी अरब जे दौरे ते मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि मके शरीफ में उमिरो अदा कयो। पाकिस्तानी वफ़द कब्तुल्ला जी ज़ियारत बि कई। उमिरो अदा करण बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर ऐं ॿियनि मेंबर्स मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी ऐं मुसलमाननि जी सलामतीअ लाइ दुआ बि घुरी। अमेरिकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती? अमेरिकी सदर ट्रंप जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रंप परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वाइदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। अमेरिका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करणु घुर्जनि। जंग बंदी बाबति कयल वाइदा पाड़े

0: नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज लीग 24 सीटनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थींदो। नवाज लीग वधीक कामयाबी माणींदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।